अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: जय जय
1: श्री दशरथ नंदन भगवान की
0: जय
1: श्री कैकेय नंदन भगवान की
0: जय
1: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
0: जय
1: श्री चारों भैयन की
0: जय
1: हनुमान जी महाराज की
0: जय
1: श्री राम जन्मभूमि की
0: जय
1: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
0: जय
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
0: जय
1: श्री अयोध्या धाम की
0: जय
1: श्री सरयू महारानी की
0: जय
1: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
0: जय
1: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
0: जय
1: समस्त पूर्वाचार्यों की
0: जय
1: सर्व संत वैष्णव भगवान की
0: जय
1: सत्य सनातन धर्म की
0: जय
1: गो माता की
0: जय
1: भारत माता की
0: जय
1: राता श्रृंगार आरती
0: की जय श्री सीताराम।

बोलो भाई सब संतन की।

ओम राजा दिराजा प्रदेता।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को अति पुरातन तथा सनातन बतलाते हैं। वह हर युग में आवश्यकतानुसार स्वयं के प्रकट होते रहने की

श्री भगवान कर्म अकर्म तथा विकर्म की गहनता स्पष्ट करते हैं। वह यज्ञ की महिमा का विवेचन करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं।

श्री गोविंद ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पांडव, अपने हृदय में स्थित अज्ञानी संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर रण के लिए तैयार हो।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: come, I just give a chain of my hand. Come, no palm with that, yea, no man. Come, shake a bit, yea, no man. Come, Ananta Gunagambira, yea, no man. Come, I cover Scarasavita, yea, no man. Come, Amata Swab Sanila, yea, no man. Come, I just give a dinner, yea, no man. Come, Asa.
1: कावेरी के किनारे किनारे सुनिए अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम। अनुसंधान आलेख और प्रस्तुतिकरण H.V. रामचंद्र राव। ध्वनि संयोजन एवं प्रस्तुति सहाय A.R. गोपाल नायक। सुनिए रूपक कावेरी के किनारे किनारे।
0: ओम चंद्र पुष्कर मध्यस्था यै नमः। ओम चतुरानन पुत्रिका यै नमः। ओम चोड़देश जनोद्धार ग्रीष्मकाल प्रवाहिनी यै नमः। ओम चुंचुक्षेत समानीता
2: दक्षिण देश में कावेरी प्रसिद्ध नामी है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ के नीचे उत्पत्ति होती है। कावेरी तुला मास में ऊपर उगती है, बुलबुलें ऊपर आती है। उस समय लाखों यात्रीगण यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ पीकर चले जाते हैं।
3: हाँ, मैंने भी स्नान किया, तीर्थ पान किया, पर अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस नदी के किनारे किनारे सागर संगम तक जाऊँगा।
4: नमस्कार श्रीमान जी।
3: नमस्कार।
4: आपको इस क्षेत्र का परिचय करा दूं?
3: हाँ,
4: मैं यहाँ का अधिकृत गाइड हूँ।
3: हाँ, मेरे साथ कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेंगे।
4: हाँ,
3: आपका पारिश्रमिक मैं दे दूंगा।
4: क्यों नहीं, मुझमें तमिलनाडु के क्षेत्रों में यात्रा करने की इच्छा भी है।
3: अच्छा,
4: एक पन दो काश हो जाएगा।
3: आपने सुना अष्टोत्तर पूजन में एक अंश चोड़ देश
4: को जल द्वारा उद्धार कर ग्रीष्म काल में भी प्रवाहित होने वाली नदी है। मंत्रकार ने कावेरी की जीवनदायिनी शक्ति को कुछ ही शब्दों में भर दिया है।
3: अच्छा,
4: चलिए आपको कावेरी की कहानी सुनाएंगे।
3: हाँ।
4: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते।
4: आप इन्हें कावेरी की कहानी सुनाएंगी?
5: क्यों नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न कावेरी राजा कवेर की पालित पुत्री थी। उन्हें ऋषि प्रवर अगस्त्य को विवाह में देते समय राजा ने अनुशासन रखा।
6: आप मेरी पुत्री को छोड़कर कभी दूर न हो। आप इस अनुशासन को तोड़ेंगे तो कावेरी आपको छोड़ देगी।
3: तो अगस्त्य ने अनुशासन तोड़ा होगा?
5: हाँ, विवशता में। एक बार वे वेद शास्त्रों के शास्त्रार्थ में इतने मग्न हो गए कि कावेरी का विस्मरण सा हो गया। जब वे घर आए वह नहीं थी। उसने तलकावेरी के इस कुंड में देहांत कर लिया था।
3: अगस्त जी बड़े व्यथित हुए होंगे।
5: हाँ, वे व्यथित होकर जहां तहां भटकते रहे। फिर इस जलकुंड पर आकर उन्हें पता लगा कि कावेरी यहाँ पर जलमग्न है।
3: अच्छा।
5: उन्होंने कावेरी से बड़ा अनुनय किया।
3: जिसका देहांत हो जाए वो फिर लौटते कैसे?
5: यह ऋषि का प्रभाव था और कावेरी की शक्ति थी। उसका अर्धभाग लोपा मुद्रा के रूप में अगस्त्य जी को मिला। शेष अर्धभाग प्रतिवर्ष तुला संक्रमण के अवसर पर यानी अक्टूबर 17 तारीख को नदी के रूप में यहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु को जीवन धारा प्रदान करता है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्री जी आगे बढ़े।
3: कहाँ?
4: यहाँ से ब्रह्मगिरी तक कावेरी गुह्य वाहिनी है।
3: हाँ।
4: यानी छिपकर बहती है।
3: अच्छा अच्छा।
4: वहां से बह निकलती है। ब्रह्मगिरी में भ्रुगुंड महर्षि स्थापित ब्रह्म विष्णु और शिव के मंदिर हैं।
3: अच्छा।
4: फिर हम वहां से कृष्णराज सागर वृंदावन चलेंगे।
3: अच्छा चलें।
4: यह है कृष्णराज सागर। यहाँ आपको दो व्यक्तियों से मिलाएंगे। मिलिए इनसे। इनका शुभ नाम है श्री कृष्ण। ये यहाँ के मुख्य अभियंता हैं।
3: नमस्कार।
7: इनदिगे लक्ष्मण तीर्थ मत हेमावती नदीगळु सेरुवा संगम
8: लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती के संगम स्थान पर सर एम विश्वेश्वरैया जी की योजना के अनुसार 1931 में बांध बनाया गया। यह मैसूर शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है। इस बांध का जलानयन प्रदेश 10,619 किलोमीटर है। यहाँ से सबसे अधिक जल निकास का गात्र 2,90,000 क्यूसेक्स है। इस बांध का जल ग्रहण सामर्थ्य 48.335 TMC होगा। सिंचाई के लिए बाई ओर विश्वेश्वरैया नहर है और दाई ओर देवराज अरस नहर है। कृषि का क्षेत्र आजकल 1,96,000 एकड़ तक विस्तृत हो गया है। इस नहर के जल से श्रीरंगपट्टन, पांडवपुर, मंड्या, नागमंगल, हेगड़े देवनकोटे, मैसूर और तिरुमकुडलु नरसीपुर तालुक के किसान धान, ऊख आदि की कृषि करते हैं।
3: कितना सुंदर स्थान है, यहाँ का उद्यान भी बहुत सुंदर है।
4: आप यहाँ के फौरों को और बिजली के वर्णमय कांति को देखकर चौंधिया जाएंगे।
3: अच्छा,
4: हर इतवार को और छुट्टी के दिनों में संगीत की लहरों के साथ फवारों का जल नृत्य करता है। चलिए, फवारों का संगीत नृत्य शुरू हो गया। इनसे मिलिए, ये हैं श्री रामू, बागवानी विभाग के एक अधिकारी हैं। इस उद्यान में इन्होंने 12 साल सेवा की है।
3: नमस्कार श्री रामू जी, आप वृंदावन के फूल पौधों के बारे में कुछ बताएंगे?
9: आ गार्डन के तकनते फाउंटेन से कुटरो।
8: इस उद्यान के योग्य फव्वारे बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, बत्तियां लगाई गई, प्रकाश व्यवस्था हुई, इन तीनों का संयोजन यहाँ स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगल में फलों का एक बगीचा भी है। लगता है कि यहाँ आने वालों को ऐसे फल खाने को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य था। कावेरी के तीर पर फलों के इस बगीचे को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है कि इसके पके फल पानी में गिरे, उसके बीच बहकर तीर प्रदेश के खेतों में पहुंचे और वहाँ फलों के और नारियल के पौधे उगे।
3: कृष्ण राज सागर और वृंदावन देखकर मुग्ध हो गया।
4: अब तो हम मैसूर वापस आ गए हैं। मैं आपकी बहन श्री डी देवराज से करा दूंगा, वे यहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं, यहाँ के मंदिरों के बारे में बताएंगे।
3: अच्छा,
10: रंगनाथ जी की जो मूर्ति इधर है वह कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंश होयसल के जमाने की है। तलकाड़ में भी कई मंदिर है, उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है।
3: आप कहाँ ले चलेंगे?
4: चलिए शिवन समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है।
3: वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन वस्तु खंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है।
4: यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी।
3: नमस्कार।
11: द फॉर्मर महाराज ऑफ मैसूर विद द असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स।
6: मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक केंद्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया।
3: यहाँ कितने जनरेटर हैं और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है?
6: टोटल यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी।
4: इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलुरु वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता।
11: वाटर इज आल्सो बीइंग फेड टू बेंगलुरु थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलुरु।
6: यहां से बेंगलुरु को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।

0: elected to take up the fourth stage also.
1: अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे, यहाँ की हरियाली देखनी हुई।
2: सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोनी सोनी गंध, मेहनतकश मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटें। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है, तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम।
1: कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं, यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है।
2: वाह,
1: इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लु। ये हैं श्री चौड़प्पा जी, भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के एक प्रगतिशील किसान।
3: मोहिचे विश्वेश्वर कैनाल प्रारंभवाद मेले सीढ़ना बंद मेले इल्ली कब्बू बत्ता रागी बड़े गड़ना
4: बड़े। 1931 के बाद विश्वेश्वरैया नहर के आने से यहाँ एक धान वगैरह की खेती होने लगी। अब यहाँ 3 चीनी के कारखाने हैं। आज भी यहाँ केवल 1/3 जमीन ही सिंचाई का लाभ उठा सकी है। आज नागमंगल में जो स्थिति है, पहले वही स्थिति यहाँ थी। जमीन अवसर थी, अब साल में 3 फसल लेते हैं। और इसी गांव के मुद्दे गौड़ा जी भी यही कहते हैं।
5: ये मंडे जिले अत्यंत बरगाल के जिले मल
6: मंड्या जिले में हमेशा अकाल पड़ता था, बारिश नहीं के बराबर थी। लोग यहाँ से दूसरे स्थानों पर बसने जाते थे। हमारा सौभाग्य था कि विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी पर बांध बनाकर इस जिले के 5-6 तालुकों को सहूलियतें दी।
2: सुना है नहर आने से पहले श्रीरंगपट्टनम वाले मंड्या में लड़की नहीं ब्याहते थे क्योंकि पीने के पानी के लिए बहुओं के सिर पर कलसा रखे मीलों जाना पड़ता था
1: आपने बड़े ध्यान से सुना।
2: हाँ,
1: चलिए हम आगे बढ़ें। कावेरी ने कर्नाटक को सरसत बनाया, पर जैसे अष्टोत्तर मंत्र को आपने दोहराया, इसने चोड़ देश का जलोद्धार किया। ग्रीष्म काल में भी वहां के बहुत सारे प्रदेश, विशेषकर तंजावुर और तिरुची के क्षेत्रों की शोभा बढ़ाई। इसीलिए तमिल काव्य शिल्पाधिकारम के कर्ता इलिंगो अडिगल ने इसकी महिमा गाई है।
7: तिंगल मालई वेणकुडयान सेन्नी सेंगोल अदु ओच्ची गंगई तन्नई पुनर्ंदालुम पुलवाई वाळी कावेरी।
8: चांदनी का धवल छत्र ताना है गंगा ने, कविता बनकर बह निकली है कावेरी जलधारा ने।
7: गंगई तन्नई पुनर्ंदालुम पुलवादोळिदल कयक्कल नाय मंगई मादर पेरुंगर पेंरु अरिंदेन वाळी कावेरी।
8: गंगा की प्रशंसा पाकर भी तू नहीं छोड़ती अपना पथ, अस्खलित ब्रह्मचारिणी सदा रही समृद्धि दायिनी।
1: तिरुची के सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक प्रणतार्थी हरन तमिलों की दृष्टि से कावेरी को देखते हैं।
9: तमिल में का शब्द का अर्थ है पूंजोले अर्थात वाटिका, विरि शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। यह नदी बहते समय सुनहरी अणुओं को लेकर आगे बढ़ने के कारण कावेरी नदी को पुन्नी भी कहते हैं। तमिल काव्यों में कावेरी के बारे में कई उद्धरण प्राप्त है, यथा पट्टिनपाले में वान पोईपिनुं तान पोया मले तलय कडर कावेरी पुनल परंदु पुनकुलिक्यों, बरका हो ना हो मैं तो बहती रहूंगी, पर्वत शिखर से झरती रहूंगी, सरसाती रहूंगी, सोना बरसाती रहूंगी।
2: अब हम होगेन कल प्रपात, मेकेदाटू, सेलम, चिदम्बरम आदि स्थानों को पार कराए। कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते चलते बड़गरे, कुरुंगाडू दुरे, तुरप्पन तुर्ती, पांडी कोड़ी मुड़ी, वलंजुली, कुंभकोणम आदि शिव स्थलों को भी देख आए।
1: हाँ, अब यहाँ के बांध भी देख लेंगे, मेट्टोर, जाडरपाल्यम, मोकुंबू और ग्रांड एनिकट भी देख लेंगे।
2: अच्छा,
1: हम मेट्टोर एनिकट देखकर अब मोकुंबू पहुंचे हैं। ये देखिए श्री मुत्तस्वामी, मेट्टोर जलाशय के कार्यकारी

0: अभियंता यहाँ हैं, इनसे भेंट कर लें।
1: नमस्कार।
2: मेट्रो डैम विथ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 93 TMC, the maximum height is on 120
3: feet. मेट्रो बांध की ऊंचाई 120 फुट है। इसका जल संग्रहण सामर्थ्य 93 TMC है। क्योंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर का नाम स्टैनली था, इसको स्टैनली जलाशय भी कहते हैं।
0: हमने सुना है कि ईस्वी सन दूसरी सदी में कावेरी पर कोई बांध बनाया गया।
2: दिस कावेरी आर्म इज हैविंग दिस ग्रैंड अनिकट बिल्ट बाय करियल चोला एंड देयर इट
3: कावेरियम पर ग्रैंड अनिकट है। इसको करिकाल चोलन ने दूसरी शताब्दी में बनाया था। यहाँ कावेरी के तीन भाग हैं, कावेरी, वेन्नार और ग्रैंड अनिकट नहर। तीसरा मानव निर्मित है ग्रैंड अनिकट नहर। इसको 1933 में बनाया। इस जिले में 36 उपनदियां हैं।
4: वहाँ नदी के पार पर आप सीधे देखिए दक्षिण की ओर।
0: देख रहा हूँ और आपका इशारा भी समझ गया।
4: हाँ।
0: यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर का गोपुर है,
4: हाँ,
0: वो यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। चलिए वहीं चलें, वो श्रीरंगम के मंदिर का गोपुरम है। पहले यहाँ के प्रधान आचार्य श्री रामानुज परंपरा के गुरुवर जी पुंडरीकपुरम आश्रमम श्रीमत आंडवन स्वामीगण से मिल लें।
4: स्वामी जी, आप श्री रंगनाथ स्वामी जी के बारे में कुछ कहें।
5: अयोध्यातः रामाराधितः श्री रंगनाथः कावेरी मध्ये श्रीरंगाख्ये प्रणवाकार विमाने सदा शयानो वर्तते।
0: और कावेरी के बारे में?
5: अस्माकं पाप निवारण पूर्वकं पावनत्वेन उपनिषद प्रसिद्धासु नवसु नदीषु कावेरी अन्यतमा।
0: स्वामी जी का आशय है पाप निवारण करने वाले उपनिषद में प्रसिद्ध नौ नदियों में कावेरी का विशेष स्थान है।
5: अस्याः प्रभावं तुला कावेरी पुराणं विशेषतः वर्णयति। कावेरी त्वयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते तद्देशवासिनां मुक्तिः किमु तत्तीरवासिनां।
0: वाह, कावेरी पर बहने वाली वायु जिन जिन देशों पर चलती है वहां के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके तट पर निवास करने वाले लोगों का क्या कहना।
4: नमस्ते स्वामी जी, अब हम श्री रंगनाथ के दर्शन कर लें।

0: कैसी भव्य मूर्ति है, ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है।
1: आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय के जिह्वा से तत्काल निकला था, कंगलिर द्यातको कावेरी रंगना नोड़दा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो।

0: हाल ही में यहाँ इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया।
1: इसी गोपुर को हमने मुकुम्बू से देखा था।
0: हाँ,
1: लगता है हम तिरुच्ची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है।
0: हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय।
2: दिस इज वन ऑफ द फ्यू मेडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज।
3: यह मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं। 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं।
0: इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई, फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है।
1: कौन सा?
0: बंगारू कामाक्षी का।
1: अच्छा,
0: इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है।
1: वो क्या?

0: जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे,
1: हाँ।
0: वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे।
2: कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री तीनों तंजावर के थे?
0: दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहाँ से दूर नहीं थे।
2: अच्छा,
0: कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवायूर।

वहाँ उनकी समाधि है। उनकी आराधना हर साल तिरुवैयारों में होती है। उस महान भाव ने अत्यंत विनय के साथ संसार के कितने ही महान भावों की वंदना की थी। आज भी उस पर्व पर महान संगीतज्ञ समूह में गाते हैं।

0: कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजा राम।
1: यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर, साम, ऋग, वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता।
2: यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे।
0: यह है श्री राधा कृष्ण, यहाँ के ITI के संचालक, इतिहास के प्राध्यापक थे, पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं।
3: पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयम् पुण्यलाभः प्रवर्तते। जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयम् पुण्यलाभः किंतु सद्य पुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्।
0: जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं,
4: எங்க கிராமம் கல்லணையிலிருந்து கிழக்க திருவாரூர்ல 10 மைல் இருக்கு.
5: यह गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा, तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम 1 हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं और इसीलिए हमारा गाँव विष्णुपेट

0: की जगह नौटन गांव कहलाता है।
1: कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे।
2: The Kaveri is a very important river that is running in our Tamil Nadu.
3: कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुचि और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं, सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं।
4: अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको?
1: कावेरी जहाँ सागर में मिल जाती है, वहाँ जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यन से मिल लेंगे।
5: In the year 1934, the metro dam was constructed and also GA canal was introduced.
6: 1934 में मेट्रो बंद बनाया गया, ग्रैंड एनेकट नहर भी बनी। इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया।
4: तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा
1: पूम फुहार पर, जहां कावेरी सागर में समा जाएगी।
4: हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहां केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था। उसका विशाल पात्र देखा मुकुम में, श्रीरंग में। अब यहां कावेरी एक पतली धारा बने।
1: श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यो वर्णन करते हैं।
6: बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती। किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि हिमवान पत्नी मीना और पार्वती जी को एक ही समय में एक से स्वप्न आए। दोनों के स्वप्नों में भगवान शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। मीना को शिव एक कुलहीन भभूतधारी श्मशान निवासी के रूप में दिखाई दिए और दूसरी ओर देवी पार्वती के समक्ष वे एक तेजोमय योगी के रूप में प्रकट हुए। मीना चिंतित और पार्वती प्रसन्न थी। उधर महाप्रभो को तपस्या में लीन पाकर तारकासुर का उत्पात बढ़ने लगा। वो तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। देवताओं के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति अति आवश्यक हो गई। उन्होंने कामदेव और रति को शिव तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। तपस्या भंग होने से क्रोधित महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को ही भस्म कर डाला। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: इसके बाद क्या हुआ सूद जी?
2: शौनक जी, देवी पार्वती का मन आत्मग्लानि से भर उठा। उसमें विरक्ति समाने लगी। उन्होंने शिव आराधना बीच में ही त्याग दी। परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो उठे।
3: विधे, ये तो उचित नहीं हो रहा है। देवी पार्वती के यूं तपस्या त्याग देने से उन्हें शिव प्राप्ति कैसे होगी?
4: और शिव प्राप्ति के बिना पुत्र प्राप्ति भी तो संभव नहीं है।
5: आप दोनों ठीक कहते हैं विष्णुदेव और पुत्र नारद। निष्काम निष्पाप प्रभु के मन में उतरने का एकमात्र मार्ग उनकी आराधना ही है। उन पर किसी अन्य प्रकार का लोभ और मोह कार्य नहीं कर सकता। प्रभु को लोभ है तो अपने भक्तों की समस्या दूर करने का, मोह है तो भक्तों की भक्ति से।
4: नारायण नारायण। और देवी पार्वती के तपस्या त्याग से प्रभु इन दोनों से ही वंचित रह जाएंगे, फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्न कैसे किया जाएगा?
5: पुत्र नारद।
4: आज्ञा परमपिता।
5: देवी पार्वती के मन में तुम्हारे प्रति बहुत सम्मान है। वो तुम्हें अपना गुरु मानती है। वे तुम्हारी आज्ञा कभी नहीं डालेंगी।
4: तो परमपिता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
5: तुम देवी पार्वती के पास जाओ। उनके मन से विरक्ति भाव निकालकर उन्हें पुनः शिव आराधना के लिए प्रेरित करो। इसी में समस्त जगत का कल्याण है पुत्र।
4: नारायण नारायण। जगत कल्याण के लिए मैं तो सदा तत्पर रहता हूं देव। पार्वती शिव के शुभ मिलन के लिए आपके आशीर्वाद से अथक प्रयास करता ही रहूंगा।
3: जाओ भक्त नारद, तुम्हें अपने प्रयास में सफलता प्राप्त हो।
4: नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।
6: प्रणाम मुनि नारद।

0: अरे ये क्या देवी पार्वती, आपकी वाणी में ये कुमलाहट कैसी, और फिर ये तो आपकी पूजा का समय है।
1: मैंने पूजा आराधना त्याग दी है ऋषिवर।
0: त्याग दी है, परंतु क्यों? लक्ष्य के इतने निकट आकर तपस्या त्याग दी?
1: हमें अब कोई लक्ष्य नहीं दिखता ऋषिवर, और लक्ष्य बनाए भी तो किस आशा से, जब देवाधिदेव क्रोध में आकर ब्रह्मा पुत्र कामदेव तक को भस्म कर सकते हैं, तो हम तो एक साधारण मानवी हैं। हमें भस्म करने के लिए उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: नारायण नारायण, देवी पार्वती, ये आपने क्या तुलना कर डाली? आप क्यों भूलती हैं, इस साधारण मानवी शरीर में स्वयं शिव प्रिया शिवा का वास है। शिव तो आप पर क्रोधित हो ही नहीं सकते, अगर होते तो कामदेव के साथ साथ आपके इस मानवीय शरीर को भी भस्म कर डालते।
1: मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझी मुनिश्रेष्ठ।
0: महादेव कामदेव के जिस कर्म से क्रोधित हुए, उसके कर्म फल का पात्र तो आप ही बनती, परंतु महादेव के क्रोध की ज्वाला ने आपको छुआ तक नहीं। उनके मन में कुछ तो है, उनकी लीला वही जाने।
1: तो क्या महादेव का हृदय जीत पाना अब भी संभव है?
0: नारायण नारायण, त्याग और तपस्या से क्या संभव नहीं होता देवी पार्वती। आप अपने पिता का घर त्यागिए, गंगोत्री में उसी स्थान पर जाइए जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। मन में यह दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर पुनः तपस्या आरंभ कीजिए कि आप शिव के अतिरिक्त किसी और का पति रूप में वर्ण नहीं करेंगी।
1: जो आज्ञा गुरु नारद मुनि। परंतु गुरुदेव, इस बार आप मुझे शिव आराधना के लिए कोई मंत्र दें।
0: अवश्य देवी अवश्य। नमः शिवाय। देवी पार्वती, ये पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों का राजा है, इसके श्रवण मात्र से ही महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं।
1: जैसी आपकी आज्ञा महर्षि नारद।
0: नारायण नारायण।
2: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार देवी पार्वती एक बार फिर शिव आराधना में लीन हो गई। आभूषणों और सुंदर वस्त्रों का त्याग कर उन्होंने वलकल धारण कर लिया, अपनी सखियों जया और विजया के साथ गंगोत्री जा पहुंची।
3: परंतु महाभाग सूची, सुना है वहां की सारी वनस्पति शिव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गई थी, सभी पशु पक्षी भी वो स्थान छोड़ गए थे।
2: शौनक जी, देवी पार्वती और उनकी सखियों ने वहां अनेक सुंदर और पवित्र पौधे लगाए, देखते ही देखते उस प्रदेश में हरियाली लहलहा उठी, सब पशु पक्षी लौट आए, और फिर आरंभ हुई ऐसी घनघोर तपस्या जो महामुनियों के लिए भी दुष्कर थी।
1: नहीं माते, और कोई मार्ग नहीं है। एक महातपस्वी का हृदय जीतने के लिए महातपस्या की आवश्यकता होती है, एक विरक्त को पाने के लिए स्वयं विरक्त होना पड़ता है। तो क्या एक कपाली को पाने के लिए कपालनी का वेश धारण करना होता है? हाँ माते, करना होता है। पति परमेश्वर होते हैं, पत्नी को पति के अनुरूप ही स्वयं को ढालना होता है, और फिर सदाशिव तो स्वयं परमेश्वर हैं।
4: परंतु पुत्री, तू अपने को तो देख, कितनी क्षीण पड़ गई है तू।
1: माते, शरीर अवश्य क्षीण पड़ गया है, परंतु

0: आत्मा बलशाली हो गई है। तपस्या सदा आत्मबल बढ़ाती है माते, और माते ये आप ही की शिक्षा है कि दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए दुष्कर परिश्रम करना पड़ता है। वही तो मैं कर रही हूँ। माते, अपने सुकोमल नारी हृदय को मेरे अभीष्ट मार्ग का अवरोधक ना बनने दें।
1: परंतु पुत्री, वो भगवान
0: वो अवश्य आएंगे माते। वो भक्त वत्सल है, भक्तों को कभी निराश नहीं करते, ये मेरा अडिग विश्वास है। जाइए माते, निश्चिंत होकर जाइए। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी पुत्री अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो।
2: हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, सफल भव।
0: शिव प्राप्ति के लिए मुझे और उग्र तपस्या करनी होगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः

0: ब्रह्मदेव, विष्णु जी,
1: जी महाप्रभु,
0: इतने चिरकाल पश्चात आपने दर्शन दिए, सब कुशल मंगल तो है?
1: देवाधिदेव, कष्ट में पड़ा भक्त सर्वप्रथम आप ही का स्मरण करता है और आप तुरंत अपने भक्त का कष्ट दूर कर देते हैं। आप तो जानते ही हैं देव, तीनों लोकों पर तारकासुर नामक विपदा व्याप्त है। उधर देवी पार्वती के महातप से त्रिलोकी संतप्त हो उठी है। आपके भक्त संकट में है महाप्रभु।
0: विष्णु हरे, आपका क्या विचार है? ये संकट कैसे दूर किया जा सकता है?
2: महादेव, समस्या का निराकरण आपसे उत्तम कौन जान सकता है? परंतु आपका आदेश है, इसलिए विचार व्यक्त करता हूँ। महाप्रभु, आप देवी पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपके औरस पुत्र से तारकासुर का भी नाश हो जाएगा और महादेवी पार्वती की तपस्या भी सार्थक हो जाएगी। जगत का संताप भी मिट जाएगा।
0: परंतु देवगण, देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करते ही त्रिलोकी फिर सकाम हो उठेगी। अभी सब निष्काम भाव से परमार्थ के पथ पर चल रहे हैं और फिर कामो ही नरकायेव तस्मात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहो मोहाच भ्रंशते तपः। काम से क्रोध होता है, काम से क्रोध, और क्रोध से मोह, और मोह से तपस्या भंग होती है। इसलिए आप सब देवताओं और ऋषियों को काम और क्रोध का त्याग कर जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहना चाहिए।
1: हे भक्त वत्सल महादेव, हम लोक कल्याण के हित में ही तो आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। आपने हमारे ही अनुरोध पर देवी सती से विवाह किया था, इसलिए क्योंकि कुछ भावी असुर मात्र आपके पुत्र के हाथों मारे जा सकते थे। प्रभु, तारकासुर उनमें से ही एक है।
0: और उस विवाह का परिणाम भी आपने देख लिया था ब्रह्मदेव।
1: महाप्रभु, कहने की धृष्टता कर रहा हूं, परंतु मात्र एक कुपरिणाम सृष्टि का नियम नहीं बन जाता। नियम बनता है सुपरिणाम, जो सबको सुख प्रदान करने वाला होता है। और प्रभु, इस सबका सुपरिणाम यह है कि देवी शिवा ने ही देवी पार्वती के रूप में पुनः अवतार लिया है, मात्र आपके लिए, ताकि आपके द्वारा महाजन कल्याण के

0: मेरे सिद्ध हो, आपका औरस पुत्र सबको इन असुरों से मुक्ति दिलाए।
1: ब्रह्मदेव, विष्णु जी, स्त्री के संग को मैं सबसे बड़ा कुसंग समझता हूं। स्त्री एवं संतान के बंधन में बंधा व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। फिर मैं ठहरा वीतरागी, सन्यासी, मुझे इन बंधनों से क्या लेना देना। परंतु मैं अपने भक्तों को निराश भी नहीं कर सकता, इसलिए उचित अनुचित सभी कार्य करता हूं।
0: महाप्रभु, इसी कारण अयथोचित कर्ता के रूप में आपकी पूजा होती है।
1: मेरे हृदय में विवाह की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी जन कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूंगा। मैं पुत्र उत्पत्ति के लिए गिरिराज पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा। आप सब जाएं, मुझे विचार करने का समय दें।
2: जैसी आज्ञा देवाधिदेव।
3: हम धन्य हुए।
4: महादेव कितने विशाल हृदय के स्वामी हैं।
5: अब हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
6: आइए।
1: मेरी तपस्या के भंग होने का कारण देवी पार्वती की ही तपस्या है, किंतु मुझे उनके तपस्या भाव की परीक्षा लेनी होगी।
7: देवी पार्वती, आपके मुख पर एक बार फिर निराशा की भाव उमड़ आए हैं। क्यों देवी?
8: क्या करूं सखी जया, 3000 वर्ष की इस तपस्या के पश्चात भी मैं अपने आराध्य का मन नहीं जीत पाई हूँ। क्या माते ठीक कहती थी कि शिव पूर्णतः विरक्त हो गए हैं? क्या मुझे उनका संग नहीं मिलेगा?
7: क्यों नहीं मिलेगा देवी, आपकी तपस्या निरर्थक नहीं जा सकती।
8: मन करता है जया, इस अग्नि में देह त्याग कर अपनी यह लीला ही समाप्त कर डालूं।
7: नहीं देवी, धैर्य न त्यागे, प्रभु अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे।
9: भिक्षान देही, भिक्षान देही।
8: देख तो जया, आश्रम में ये कौन तेजस्वी वृद्ध सन्यासी आए हैं, उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आ।
7: अभी लीजिए देवी। आइए मुनिवर, इधर आइए।
8: प्रणाम द्विज श्रेष्ठ।
10: प्रणाम।
8: आसन ग्रहण कीजिए।
1: देवी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? क्या तुम किसी ऋषि की पत्नी हो जो तुम्हें छोड़ कहीं चला गया है, या तुम स्वयं गायत्री, लक्ष्मी या सरस्वती हो?
8: नहीं मुनि श्रेष्ठ, मैं तीनों में से कोई नहीं हूँ। मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। ती उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मर्षि नारद के आदेश से यहाँ तपस्या कर रही हूँ।
1: देवी, मैं इन सब देवताओं और मुनियों को भली भांति जानता हूँ, और फिर नारद। अरे गिरिजा नंदिनी, आपने किसके कहने में आकर ये तपस्या कर डाली? उनके मन में कुटिलता का वास है, सदा छल कपट करके अपने परमार्थ साधते रहते हैं, अपने मोहक शब्दों से दूसरे को पथभ्रष्ट करते रहते हैं।
8: ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर?
1: नारद सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते रहते हैं। दक्ष पुत्रों को तपस्या के मार्ग पर डाल दिया, और अब आप जैसी सर्वगुण संपन्न देवी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं।
8: मुनि श्रेष्ठ, मैं पर्वतराज की पुत्री हूँ। देवर्षि नारद में भी मेरा विश्वास पत्थर समान कठोर है। वो मेरे गुरु हैं। गुरु कभी अपने शिष्य को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। जो इसमें विश्वास नहीं करते, उन्हें इह लोक और परलोक में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
1: गुरु के प्रति आप

0: की भावना जान बड़ी प्रसन्नता हुई देवी पार्वती। परंतु क्या आप यह भी जानती हैं कि जिन्हें आप वरना चाहती हैं उनका स्वरूप कैसा है, उनका तुम्हारा क्या मेल?
1: आप क्या कहना चाहते हैं मुनिवर, स्पष्ट करें।
0: देवी, कहां तुम चंद्रमुखी,
2: कहां वो पंचमुख

0: विराजमान होते हैं, और कहां झुंड के झुंड सर्प शिव के शरीर से लिपटे रहते हैं।
1: मणिवर,
0: कहां मृदंग की मधुर ध्वनि,
2: कहां डमरू की क्रूर डमडम।
0: आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, और वे सदा चिता की भस्म लगाए रहते हैं।
1: और उसी चिता की भस्म के भूमि पर गिरते ही सभी देवता और मानव उसे अपने मस्तक पर लगाने को आतुर हो जाते हैं।
0: वे कुलहीन हैं, जातिहीन हैं,
1: जो स्वयं निर्गुण ब्रह्म हैं, अजन्मे हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है।
0: वे अशिक्षित हैं, उनका कोई गुरु नहीं है।
1: जो भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, उन्हें विद्या से क्या काम, वही तो सबके गुरु हैं।
0: वे निर्धन हैं, उनके पास धन होता तो अर्धनग्न क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, ना उनके पास आवास है ना निवास।
1: विप्रवर, जिनके समक्ष आठों सिद्धियां आकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं, उनके लिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, परंतु वो भोगी नहीं योगी हैं।
0: देवी पार्वती, छोड़िए ये तर्क वितर्क, शिव आपके योग्य नहीं हैं। मैं आपका विवाह वैभव संपन्न विष्णु, वेद ज्ञाता ब्रह्मा या किसी भी अन्य देवता से करवा सकता हूँ।
1: मणिवर,
0: वे सदा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।
1: मैंने तो समझा था कि आप कोई ज्ञानी महात्मा हैं, मुझे शिव प्राप्ति का आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु आप तो शिव निंदक निकले। तेरी सती भी अपने पति की निंदा सहन नहीं कर सकी और अग्नि में होम हो गई। मैं शिव पत्नी तो ना बन सकी, परंतु उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं भी अभी तुरंत इस अग्नि में अपने शरीर का दहन करती हूँ।
3: नहीं,
0: ठहरी देवी, मेरी बात सुनिए, बहुत तीव्र अग्नि है।
3: देवी पार्वती, देवी, आप ये क्या कर रही है। देवी, मैं पर्वतराज और माती मैने को क्या उत्तर दूंगी। ये क्या, देवी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई।
1: ये क्या हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है। देवी की अग्नि प्रवेश करते ही अग्नि शीतल पड़ गई, देवी का शरीर स्वर्णिम कांति से प्रकाशित हो उठा है। देवी सकुशल है, देवी सकुशल है। विप्रवर, देवी सकुशल है। अरे अरे, ये सन्यासी कहाँ गए। ये सन्यासी तो स्वयं
0: पार्वती, नेत्र खोलो पार्वती।
3: महाप्रभो, भगवान शिव शंकर, मेरी तपस्या सार्थक हुई, सार्थक हुई।
0: पार्वती, मैंने बारंबार हर प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली, तुमसे उत्तम सहधर्मिणी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। आओ पार्वती, कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।
1: नाथ, मेरा अभी आपके साथ चलना संभव नहीं है और ना ही उचित है।
0: ऐसा क्यों पार्वती, हम चिरंतन पति पत्नी हैं, फिर ये बाधा कैसी।
1: बाधा नहीं महाप्रभो, सामाजिक नियम। स्मरण करें, सती रूप में आपने मुझसे शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न नहीं किया था, पिता दक्ष ने भी ग्रहों की पूजा नहीं की थी, इसका परिणाम हमारे समक्ष है।
0: तो आप क्या चाहती हैं देवी।

0: विवाह संपूर्ण वैदिक रीति से संपन्न हो। आप मेरे पिता हिमवान के पास मेरा हाथ मांगने आए, उनकी अनुमति से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे विदा कराकर कैलाश ले चले, तभी मैं आपके साथ चल पाऊंगी।
1: ऐसा ही होगा देवी पार्वती, ऐसा ही होगा।
2: और परम ज्ञानी सूत जी, इस प्रकार देवी पार्वती की कठोर तपस्या सार्थक हुई। देवताओं में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया।
3: हां सूत जी, कितने अवरोधों के बाद उनका मनोरथ सिद्ध होने जा रहा था। फिर क्या हुआ सूत जी?
2: सृष्टि का संताप तुरंत समाप्त हो गया। सबने चैन की सांस ली। देवलोक में महाप्रभु के विवाह की चर्चा व्याप्त हो गई। सब प्रसन्नता पूर्वक इस सुघटना की प्रतीक्षा करने लगे।
3: तो विवाह कब और कैसे संपन्न हुआ सूत जी?
2: इतनी शीघ्रता नहीं शौनक जी। देवी पार्वती की इच्छा थी कि विवाह संपूर्ण वैदिक और सामाजिक रीति से पूर्ण हो। सो उसके लिए सबसे पहले प्रभु शिव शंकर को हिमवान के घर जाकर पार्वती जी का हाथ मांगना था।
3: तो महाभाग सूत जी, क्या महाप्रभु ऐसा करने हिमवान के घर गए?
2: परम ज्ञानी सूत जी, इस रहस्य को हम अपनी अगली भेंट तक बचाए रखते हैं।
4: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के 21वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक से ली गई थी।

ಮಧುರ ಮಿತ್ರನ.

पवन घरा घरा पर प्रश्न तोरणे अवती भवती रम्य पवन चातरं गति नृत्य गायने चातरं गति नृत्य गाय।

ಪತಿವ್ರತ ಪುರುಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುತ್ರ

नगरी भरी अंतरी अयोध्या मनु

दशरथासदा सीधी भार्या, दशरथासदा सीधी भार्या, सुवंश दादा तुम सी आर्या, सुवंश दादा तुम सी आर्या, सिद्ध पतिता सेवा कार्या, सिद्ध पतिता सेवा कार्या, बहुश्रुता नारूप शालिनी, अतुल प्रभा सुंदरी, ओ अतुल प्रभा सुंदरी, अयोध्या मनोनीत नगरी, अयोध्या मनोनीत नगरी।

ಸೌಖ್ಯ ಜನಾ

सी प्रीत कहो मन मेरे ऐसी प्रीत।

0: ਮੈਂ ਨੌਕ ਕਰਿਆ ਸਹਿ ਪੜਿਆ
1: ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈਏ।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

सुभाषित स्कंद ना कार्तिकेय ना संदर्भ में मळी आवे छे। श्लोक सांभळी हा।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनुं स्वरूप छे एवा जगदवंद्य चरणारविंदथी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियों माथी रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंहों ऊपर विराजिला, मस्तकों पर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित मधुर शब्द करती घोघरियो वाला कंदोरा थी, अने रणकार करता झांझर थी शोभता, रत्न थी उज्ज्वल।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कर कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी, मैं तुझे सब

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के

आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।